ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का। जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है

छोड़ दे तू अगर सारे शिकवे गिले, खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में। दास सच्चा वही तो है भगवान का, खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में। दास सच्चा वही तो है भगवान का, तू सहारा अगर ना किसी का बना, तो ये जीवन तेरा बस।

0: अदा की बनूंगा जाना को दिन जाने वाली निजारा ठहरा काले पिंडे मानूरो खादा की बनूंगा जाना को साडा की बनूंगा जरा सो। लो जी आखरी जिहड़ा हैगा
1: जी
0: आखरी जिहड़ा हैगा सॉन्ग वो मैं तुहानू शेयर करता
1: जी
0: जी।

0: விண்ணடியின் வண்டிகை மாஹி தியதி வண்டிகை. Thank you so much. Hello.
1: Thank you, जी. बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जी. थैंक यू हर बार की तरह जी. जी दोस्तों ऐसा जी मोहम्मद जी बख्शी जी जुड़े सन अपने नाल दुबई तो, थोड़ा जिहा नैट दी शायद प्रॉब्लम सी उन्हां दे वल्लों, आवाज थोड़ी जी हो रही सी डिस्टर्ब, पर फिर भी सुनन योग सी. लो फिर दोस्तों इस दे नाल ही मैनूं तो आ गया सोमवार नूं मिलन दे वादे दे नाल होवेगी मुलाकात, ते जुड़दे आ फिर नवां वेला प्रोग्राम लैके सैटरडे संडे कल नूं जिहड़ा समझ जी संघ शमी होणगे हाजर महफल मित्रां दी लैके प्रोग्राम, ते प्रोग्राम नूं सपोर्ट करन दे लई बहुत बहुत शुक्रिया सारे दोस्तां दा, धन्नवाद है अपने हरविंदर जौल भैन जी, जगदेव संधु जी, सिकंदर सिंह ओजला, महेश जी, भान सिंह गरेवाल जी, सुरेंद्र कौर माल जी, मान सिंह सैनी साहब, बलवीर सिंह सैनी साहब का शुक्रिया, धन्नवाद है. लो फिर दोस्तों हैव ए नाइस वीकेंड सब नू, रखड़ी वाला दिन भी मुबारक हो, हसते वसते रहो, खुशियां खेड़े लगे रहन, सोमवार को मिलन के वादे दिन मुलाकात होगी भारतीय समा 9:30 बजे, बद घट बोल के गुस्ताखी माफ, ते सोमवार को मिलन के वादे होगी फिर तो मुलाकात. सत श्री अकाल दोस्तों.

गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। असी दिन रात

देंगे जब हम जवांगे। ऐसे हंसती थी वो, ऐसे चलती थी, चांद के जैसे छुपती और निकलती थी। ऐसे हंसती थी वो, ऐसे चलती थी,

तेरे शबनमी ख्वाबों की तस्वीरों से, तेरी रेशमी जुल्फों की जंजीरों से, तेरे शबनमी ख्वाबों की तस्वीरों से, तेरी रेशमी जुल्फों की जंजीरों से।

0: जब हम जवान होंगे। लो जी, ऐसी सजना दी याद दे
1: वाह
0: वे जी।
1: जी वाह, क्या बताएं, क्या
0: बहुत कम ने किया, चलो अज यही सुना देने हैं। बाकी
1: बहुत
0: तुम्हें
1: ही कमाल
0: पता
1: है, बहुत ही खूब।
0: किताब पता गाने का अपने 900 से 32 32 बाकी रहने हैं। ये
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, सलामत
0: भी गल ठीक
1: रहे
0: है जी।
1: दोस्त
0: सलामत रहे दोस्ताना, मिले बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा।
1: हमारा
0: धन्यवाद
1: हमारा।
0: जी शमी जी, बहुत
1: शुक्रिया
0: बहुत
1: जी,
0: जी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया जी, मोहब्बत जिंदाबाद ते जिंदगी जिंदाबाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लो जी दोस्तों, इन्नी मेरी बात ते उत्तों पैगी रात, रात बजे उत्तों पैंदी हुंदी है, ऐ तो होने भी जमीन चो निकलिया कि अंब का बूटा बन के रात निकली, पर वो आनी उत्तों ही। चलो पर फिर भी चलो कहावत कहावत ने, आप सीधे तरीके कहावतों का जरा नजिटना चाहिए। इन्नी मेरी बात ते उत्तों पैगी रात दोस्तों, पर बहुत छेती हो जानी है प्रभात, ते फिर तो शुरू होगी गलबात। ये गलबात का सिलसिला जारी रहेगा, वो जिम्मे रिले रेस चलती है। ऐ ये लो जोत से जोत जला ते जलो, यही जड़ी टॉर्च जड़ी मशाल ये हुण जाएगी फिनलैंड। फिनलैंड दे विच सोमवार नूं जगणगियां बत्तियां, ते असीं सुणांगे जिंदगी नामा हाल ए दुनिया भुपिंदर सिंह भारत साहब की मेजबानी दे विच। सो दोस्तो स्नेहा दे लई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आवाजा नूं असीं अज मिस भी कीता है, ते अज बहुत नवीं सांझा पईआं दिल दीआं गहराईआं तों, आप सब दा बहुत बहुत शुक्रिया। ते मोहब्बत जिंदाबाद जिंदगी जिंदाबाद कहिंदे होए एक बार फिर तो शुक्रिया अदा करदे हां उन्हां सारे दोस्तां दा, सिकंदर सिंह औजला जी, सुरिंदर कौर माहिल जी, भान सिंह गरेवाल जी, महेश सवान जी, जगदेव सिंह संधु जी, बलबीर सिंह सैणी जी, अमृत कौर, लाली टोड़ा जी, ते चरणजीत कौर जी, माता जी उन्होंने स्नेह भी आए सी, तुहानू धन्नवाद जी। तो एच एस मिठू, हरकिरण सिंह मिठू जी, ते जैसमीन, नरेश वर्मा, जोगेश्वर सलारिया, ते यादविंदर प्रदेशा जी, ते सारे दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिलसिला मुहब्बत का इंज ही चलता रहे, ते ये मुहब्बत का दरिया ये कारवां इंज राह दे उत्ते मुहब्बत दे राह ते चलता रहे, ते असी एक दूसरे की मुस्कुराहट का कारण बनीए, ते खुश रहिए ते खुश रखिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मुहब्बत जिंदाबाद अते जिंदगी जिंदाबाद कहते हुए देने इजाजत, रब रखा दोस्तों। 1 2 3

अपने वीरा नाल माए रल के मैं रहंदी सी, तेरे कर बैठी माए दस तेनू की कहंदी सी। जुदा अपने तो कीता माए, जुदा अपने तो कीता माए, तू तो दुख भी ना फोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए कंधा दे ओले नी। तिया तन ने बेगाना माए, तिया तन ने बेगाना माए, सच कर दे।

एक ऐसा फर्ज निभाया तू, सारे बुक बुक रोंदे माए, सारे बुक बुक रोंदे माए, मोहो कोई ना बोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। छड़ चली अज माए, छड़ चली अज माए, बाबले दी गली मैं जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली मैं। छड़ चली अज माए, बाबले दी गली मैं जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली मैं, हुन साम के रख ले माए, हुन साम के रख ले माए, मेरे गुड़िया पटोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। तेरे की करा महल चुबारे माए, तेरे की करा महल चुबारे माए, जिथे मेरे जोगी था नहीं, जिथे मेरे जोगी था नहीं।

जिंद वादियां चे डुब गई जिस्म तरी जांदा ओ डुब जाना अजे भी वादे करी जांदा। सूली उत्ते चढ़ के मैं ता जर किया भी नहीं,

ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे, जिंद वादियां चे डूब गई, जिंद वादियां चे डूब गई जिस्म तरी जांदे, ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे, चुक लवा जे सिरे ओदा निकल जाए दम, चुक लवा जे सिरे ओदा निकल जाए दम, की करा जे आपे चे, की करा जे आपे चे जिस्म लड़ी जांदे, ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे, जिंद वादियां चे डूब गई जिस्म।

ओ डुब जाना अजे भी वादे करी जांदे। भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे, भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे। ए कौन जो हक्कां लई, ए कौन जो हक्कां लई सूली चढ़ी जांदे, ओ डुब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिंद वादियां चे डुब गई, जिंद वादियां चे डुब गई जिस्म तरी जांदे, ओ डुब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिस चेहरे तेरा ऐ जिस्म लोहा हुंदा लाखा नहीं, जिस चेहरे तेरा ऐ जिस्म लोहा।

0: भैया।
1: तारा सिंह तो बाद हूँ मैं इंग्लैंड वसदी साडी शायरा मनदीप कौर पंडाल जिहड़े कि पिछले साडे दो कवि दरबारां दे विच आ के हाजरी भी ला चुके ने ते इस बार असीं उन्हां नूं फिर सद्दा देण जा रहे हां वो आण ते साडे दुआबा रेडियो दे श्रोतियां दे नाल अपनियां मन दियां गल्लां करन ते श्रोते भी उन्हां नूं अपने मनां दे विच वसाउण दी कोशिश करनगे ते मैं मनदीप कौर पंडाल जी दा निघा स्वागत करदा हां।
0: सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं हाँ मनदीप कौर भंडाल, लंडन तो। जिथे किते भी मैनू पंजाबी माँ बोली नू प्यार करने वाले स्रोते सुन रहे ने, मैं उन्हां नू तहे दिलों प्रणाम करदी हाँ, नमन करदी हाँ। मैं अपनी कविता पेश करांगी जिसका सरलेख है मुटियारे घुंड चक दी। ये कविता मैं कदों लिखी, जदों मैनू दर्द उठ्या कि अज भी औरत किस धक्के का शिकार है, बलात्कार का शिकार है, जां उस दे उत्ते मूंह दे उत्ते तेजाब पाया जांदा, जां उनू दाज दहेज दे लई दुखी कीता जांदा है, जां उह मर्द दे पिछे लग के अपनी वोट का अधिकार यूज करदी है, जां उस दे हक दे उत्ते कब्जे हुंदे ने। जदों उह पढ़ लिख के अपनियां डिग्रियां घरे रख लैंदी आ, सिर्फ बच्चे पालदी आ, जदों कि पढ़न लिखण दे नाल उनू अपनी पढ़ाई लिखाई दे बेस ते कोई नौकरी करनी चाहीदी आ, बराबर पैसे कमाने चाहीदे ने। ते इसे संबंध विच कविता लिखी है कि अपने हक्कां दे लई तू स्टैंड अप कर। सो पेश है मुटियारे घुंड चक दी। हक तेरे ते जदों कब्जे ने होण, हक तेरे ते जदों कब्जे ने होण, मूँह तेरे ते जदों ताले ने लाउण, मूँह तेरे ते जदों ताले ने लाउण, मुटियारे हुण घुंड चक दे, मुटियारे हुण घुंड चक दे। क्यों पिछे लग के पावे वोट, क्यों पिछे लग के पावे वोट, जे तेरी मत विच कोई ना खोट, जे तेरी मत विच कोई ना खोट, मुटियारे हुण घुंड चक दे, मुटियारे हुण घुंड चक दे। ब्याह तेरे दे सौदे पैसे दे नाल होण, ब्याह तेरे दे सौदे पैसे दे नाल होण, डिग्रियां तेरियां पईयां फाइलां दे विच रोण, डिग्रियां तेरियां पईयां फाइलां दे विच रोण, मुटियारे हुण घुंड चक दे, मुटियारे हुण घुंड चक दे। अपने आप नू समझ ना छोटी, अपने आप नू समझ ना छोटी, तू ही पकावे एदी रोटी, तू ही पकावे एदी रोटी, मुटियारे हुण घुंड चक दे, मुटियारे हुण घुंड चक दे। कातों बनी तू एदी चीज, कातों बनी तू एदी चीज, सवाल बन गई तेरी तमीज, सवाल बन गई तेरी तमीज, मुटियारे हुण घुंड चक दे, मुटियारे हुण घुंड चक दे। बलात्कार तेरे अज भी होण, बलात्कार तेरे अज भी होण, सुनदा ना कोई तेरा रोण, सुनदा ना कोई तेरा रोण, मुटियारे हुण तू घुंड चक दे, मुटियारे हुण तू घुंड चक दे। मूँह तेरे ते तेजाब इह पौण, मूँह तेरे ते तेजाब इह पौण, सदरां नू तेरियां लांबू ए लौण, सदरां नू तेरियां लांबू ए लौण, मुटियारे हुण घुंड चक दे, मुटियारे हुण घुंड चक दे। पढ़ के तू बन गई ए जज, पढ़ के तू बन गई ए जज, तेनू आ गए हुण सारे चज, तेनू आ गए हुण सारे चज, मुटियारे हुण घुंड चक दे, मुटियारे हुण घुंड चक दे। दाज दे लई तू जामे फुकी, दाज दे लई तू जामे फुकी, पैर दी जुत्ती फिरना कुकी, पैर दी जुत्ती फिरना कुकी, मुटियारे हुण तू घुंड चक दे, मुटियारे हुण तू घुंड चक दे। पच्छम दी तू करना नकल, पच्छम दी तू करना नकल, जग ते है तेरी बखरी शकल, जग ते है तेरी बखरी शकल,

जदों समय दा चक्कर चलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, रिश्ते नाते सब तोड़ के सुटते, वो रिश्ते नाते सब तोड़ के सुटते, प्यार वफा सब जड़ तो पुटते, पीछे कौड़ी पजदा फिरदा, पता न कोई पलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, लेखा लिखिया मेट न सकदा, हो लेखा लिखिया मेट न सकदा,